रंग बनाया वतन को ताबर क्या पांगोलो जबर आकिया की को चार बनyak santren nah budu oncar santren ke pangolo jebernya mana kok.

भी अल्लाह परमात्मा मनाबी सकाइए पुन मसोक इसला पस्ताय भी चन कुत्रा सुला लुमपा आचुरन पोले चन कुत्रा सुलो होला।